0: सकती है। रीड
1: फॉर Found George Clayton. Looks like we're going to be turning on Clayton.
2: Everyone.